0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिश वारसी। मोनिश जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज़्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिश जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिश जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का है उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते हैं ना एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड पर या किसी और मोड को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बायकॉट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं।
0: हाँ।
1: शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज है जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है उस चीज को आपको, ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेरो शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जाना, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते ही। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया,

0: तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक मेरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा, एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा। तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा। जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए हैं।
0: अगर
1: डायमेंशन शायद इश्क का ही है
0: और वो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा। वो
1: तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को ये मुझे मालूम है। और एक आशिक के लिए जानना इतना काफी, मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और वो मुझे हमेशा से पसंद है, मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन में।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम, मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ, वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महफूज है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रख के ये शेर लिखा था। मैंने तो जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है, उतना ही सेम है, उसी जगह पे वो शिफ्ट नहीं होता है यूजुअली, वो वहीं पे जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे शबीर हो चाहे मानस हो उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए कि
1: किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है। आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है। सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है। जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है, जो हार जाता है वही जीत जाता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे? प्रेम को छोड़कर
1: मैं कहूँगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए वो,
0: जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मेरे।
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए।
0: करेक्ट।
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया।
0: हाँ।
1: बोले तू कुछ है ही नहीं।
0: करेक्ट।
1: तितर बितर।
0: करेक्ट।
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा, बोनस क्या है, शब्द क्या है, कुछ नहीं। तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही।
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार। कि किसी के लिए हम हार जाए तो ये मुसीबत है, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा वो सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे? कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: क्यों नहीं होगा, हम और आप एक दूसरे के हो सकते हैं। अभी दुनिया में इतनी नफरतें हैं, हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, किसी न किसी वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
0: हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
1: अब उसके बारे में हमें नॉलेज
0: वो तो जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल
1: है। इश्क का रियल शब्बीर भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, चलते रहता है। लोगों को लगेगा कि आप कुछ भी हो कुछ, अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूं क्या रहने दूं।
0: हां हां हां, वाह वाह वाह, फिर से मुकर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं क्या रहने दूं।
0: वाह वाह वाह,
1: ये भी रेंज है।
0: वाह,
1: मैं ये कहता हूं कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं है।
0: करेक्ट, आशिक
1: कभी ऊपर भी रहेगा कभी
0: नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है।
0: करेक्ट,
1: ऐसे ऐसे अशार आदमी लिख देते हैं, लगेगा कि ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बनाइए प्यार
1: करने को गाली नहीं दे सकता, आशिक होता तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। तो इसलिए मैंने मीरा से ही आप पहले अवगत कराया,
0: लेकिन यही एक चीज है। आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं। कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूं, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो, मैं देखता हूं, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको, उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: नहीं, करेक्ट, एब्सोल्यूटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे, मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिए, मैं एक अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ।
0: वाह वाह,
1: और वो इश्क पहुंचता है। मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है। और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर आज पर जो है, आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
0: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया सब
1: फिर
0: कुछ
1: फिर भी।
0: ऐसे ही एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को तबाह कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
1: जो साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला कर
0: आता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, ये अब इसको मैं इलैबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलैबोरेट करेगा, बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महदूद है उसके।
0: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
1: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे, मतलब आज के लोग शायद दूसरी तरीके से समझे, मगर मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है मेरा, मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मीडिया साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मिलने आया बैठो बुला के लाता है, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं, खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य, एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया, तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो, तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली, कि ये मैं ये चाह रही थी, तुम कौन, मैं कौन हूँ। दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो, चाहे हिंदू कल्चर हो, कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने के लिए, बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में। मैंने ऐसा सुना है और मेरे एक टीचर को बताया करते थे। तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आँख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि अब खोलो, तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
0: खड़ी है। हाँ,
1: किससे करूं, तू ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो इस लेवल का अगर यूनियन है, जो कि मतलब अभी तो
0: इसके बारे में सोचना भी
1: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
0: करेक्ट।
1: एक टॉर्च का फोकस अगर 10 mm का है, तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक LED का फोकस अगर 1 किलोमीटर तक है, तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
0: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो, हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं, और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की,

0: मतलब लफ्ज नहीं है, मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे, तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूँ लिखने के लिए, तो बहुत बार लफ्ज है।
1: राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
0: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है, मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन कर पाऊंगा। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉक तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
1: हाँ, मैं दो तीन 6-6 महीने मैंने नहीं लिखा,
0: नहीं लिखा है। तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से,
1: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ
0: नाजिल
1: हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे अपने यार ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर, पूरी फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करता, लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको, हाँ, कि आप परेशानी तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ होया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
0: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, उसकी भी एक गिजा है, तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से, जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मचल रहा है, तो वो पढ़ लिए, या वो लिख दिए कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
1: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते हो किसी को,
0: तो वो होते हैं, वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
1: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई थे, यार क्या लिख दिया मैंने,
0: एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर मैं पढ़ दूंगा, आपको मालूम है वाला शेर मैंने आपको सुनाया लिखा,
1: इरशाद,
0: कई चराग है रोशन, कई चराग
1: है रोशन,
0: बस उनकी जस्तजु से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां,
1: वाह वाह वाह,
0: तेरी ही जात थी अब तक, मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार मेरा पेन नेम है सर, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाया उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से,
1: हाँ, यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, बहुत, लेकिन सब हाथ धो रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते हैं,
0: नदी की धारा देख रहा
1: हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए,
0: बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है।
1: हाँ, तो मैं, आप जब ये शेर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ,
0: कोई तो है कि नदी सोचती है कि कोई तो है,
1: मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अगर पीने से इन लोग इतने खुश है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए, सब लोग ने इश्क लुटाया आपके महबूब ने, आपके महबूब ने सबको इश्क बांटा, उसके पास तो इतना इश्क है कि उसने सबको बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा, मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर
1: रहा हूँ,
0: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं

0: सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था। अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे इससे मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था, मगर अब
1: तो, लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या करूं,
0: मेरी आंख से आंख मिल गई उनको,
1: बस बस एक बार वो देख ले उसमें ही खुश है, बस उसमें ही खुश है।
0: जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
1: हां वाह वाह वाह,
0: जब से देखा हमने होश में आया है।
1: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है।
0: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
1: हाँ तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर, मैं बोला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि आ हा हा क्या क्या हो गया। मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो वही तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया,
0: खराब है।
1: तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
0: ऐसा होता है जब,
1: हाँ,
0: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है, पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: क्योंकि इश्क जो है, हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है। इश्क, अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए, वो इश्क नहीं है कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे, एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ये करे, नहीं, इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन नहीं है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया, नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की लिए बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे, जो तुम कल
1: थे ना, करेक्ट करेक्ट,
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा,
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा वही है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहाँ से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेयर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहाँ पे आपने कुछ शेयर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेयर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेयर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है, नहीं, करेक्ट,
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेयर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार, तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना कि दीवार के उस पार क्या है,
0: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब आप अपनी बात पहुंचा पाऊं तो इस तरीके से करूंगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे, हाँ, मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: इनायत शाह कादरी साहब उनके जो गुरु जी थे, और भुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे थे तो भुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था, उसके पास क्या रखा है। तो बुल्ले शाह के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सब अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो भी था उनका, जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया, अब वो परेशान हो गए। तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरुजी की गलियों से, निकलते थे, सब चीज करते थे, यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहां से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहां पे कोठे पे चले गए वो। तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल वगैरह कैसे ऐसा, आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम है, मौलाना, आप नाचेंगे? बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा तो मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। ना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है, आज आज आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा, तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सब फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक ही है, तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ साल वो परेशान रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो, दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर फोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं मुझे मर, मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह चाहते थे किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या इस तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे।
1: हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
0: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए। और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी ये सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है, या कर रहा है, या कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप, आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है चक्कर लगाने के लिए, हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम,
1: वाह वाह वाह,
0: कि ए इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और। तो ये पहल सुनियादी बात है, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल था आपने कुछ लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा
1: गया। हाँ तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा
0: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा।

0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ, बहुत
0: ही वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आपको गुनगुनाना
1: है, बीच की है कुछ लाइनें, जैसे

0: तेरा मैं तेरा
1: क्या मतलब। देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना पीना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
2: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है
1: उसके
2: अलावा बात है। मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं, उसके अलावा की बात ही करूंगा। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शकील भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं कर रहा ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ ये, तो ये ज्यादा ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
1: दोनों नहीं कर सकते।
2: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना।
1: हाँ, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
2: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द।
1: नहीं लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में, तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है, फिर उससे प्यार हो गया नहीं वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
2: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है मुझे उतना नहीं है चला, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
1: का भी भला हो असरार,
2: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
1: वाह वाह,
2: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में, इस मिजाज में, बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर लें मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से इधर उधर, वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
1: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
2: कभी गुस्सा गए तो कभी नफरत हो गई तो कभी ये हो गया, कभी बहुत प्यार आ रहा है
1: तो वही, मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे हैं,
2: बहुत बहुत अच्छी तरीके से।
1: वाह वाह वाह,
2: बस वही है।
1: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया, और अब वो प्रोफेसर माने नहीं तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको, और पूरी रात बैठ के शायरी सुना, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कहता है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहां पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कप कपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी, और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में, ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है। हाँ ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायद उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा,
2: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
1: ओके
2: वही हमको मिला दिया था ना जब वहां पे दो आत्माएं थी वहीं मिल लेते, क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही। मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया, मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है। इश्क जैसे इश्क भी कई कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है, और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इस दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या है।
1: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
2: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई।

0: मोहब्बत से। दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग, जब दुनिया बनी बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
1: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
0: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है, वो यूनियन का ही एक समझ लीजिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपने करे वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक, मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही ज्यादा, वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिला जाता है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम अगर, मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
1: हाँ वो तो सही बात है, वो तो सही बात
0: तो
1: है,
0: यही जवाब है मेरा।
1: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते
0: यार? लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। तो मेरे सारे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है, मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
1: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है,
0: इश्क करता तो कुछ नहीं करता था शायद, फिर इश्क करता और कुछ नहीं करता, मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता हूँ, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
1: अच्छा,
0: और सबको मैं सबको मतलब सबको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने एनवायरनमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
1: इश्क करें, प्यार करें। इसका मतलब यह है जाके जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
0: than anything.
1: Yeah, than anything gets bent towards humanity. Just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive. आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
0: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो वी हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शबीर भाई। आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा मुझे नहीं।
1: वाह,
0: बहुत खूबसूरत।
1: इससे अच्छी क्या ही एम हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का, कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जाम्पल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड, ये बाउंड नहीं रहना चाहिए, या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें, इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बनके आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते,
0: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है
1: जनाब, ठहरा हुआ पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नवे कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय,
0: थैंक यू।

0: को सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। काफी दिनों बाद एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो शायद आज के वक्त में बहुत जरूरी है। जैसे कि आप और मैं और बाकी सब लोग भी जान रहे हैं कि हम किस तरीके से कितने ज्यादा AI फ्रेंडली हो चुके हैं, और AI फ्रेंडली में जैसे किसी एक ने कुछ फिल्टर यूज किया तो उसी फिल्टर को फॉलो करके हम खुद अपनी उस तस्वीर को उस समय हम कैसे दिखते उसमें चले जाते हैं। तो ठीक एक ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड की एक कहानी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कितना इजी है AI को यूज करना, लेकिन AI यूज करते करते हम उसमें हमारी क्या क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो बस आपको थोड़ा सावधान करने के लिए, थोड़ा सतर्क करने के लिए लेके आया हूं मैं कहानी जिसका नाम है एक फिल्टर। ये कहानी कोई सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल की नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक नॉर्मल सोची गई समझी गई कहानी है एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो कहानी का नाम है एक वायरल फिल्टर की कहानी। एक फोटो सिर्फ एक AI फिल्टर और 72 घंटों के अंदर एक सीधी सादी औरत की पूरी जिंदगी इंटरनेट पर बिकने लगी। ये कहानी फिक्शन है, लेकिन इसमें दिखाए गए साइबर क्राइम 100% रियलिटी से इंस्पायर्ड है। बारिश की हल्की बूंदे, मरीन ड्राइव पर रेट्रो म्यूजिक, रील शूट करने यंगस्टर्स और हर दूसरे फोन में एक ही ट्रेंड, मेक 80s फोटो। 31 साल की आयशा शेख एक गवर्नमेंट एड स्कूल में मास कम्युनिकेशन पढ़ाती थी। सिंपल, इंटेलिजेंट और फैमिली ओरिएंटेड। सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर नहीं थी, लेकिन ट्रेंड्स देखने और उसे फॉलो करने उसे काफी ज्यादा पसंद थे। स्कूल के स्टाफ रूम में सब टीचर्स अपने 80s AI पोर्ट्रेट्स दिखा रहे थे। देखो आयशा, मैं बिल्कुल रेखा लग रही हूं ना? हाँ, रेखा देख रहे हो आप? देखो आयशा, मैं बिल्कुल रेखा लग रही हूं ना? जैसे ही कहा, पूजा मैम हंस पड़ी। नैना ने धीरे से कहा, मुझे ये AI ऐप पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत परमिशन मांगते हैं। आयशा मुस्कुराई, अरे यार एक फोटो एडिट तो है और क्या। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। घर आकर आयशा ने प्ले स्टोर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम से एड से एक ऐप डाउनलोड करी और उस ऐप का नाम था रेट्रो कैम 80s AI। इंस्टॉल होते ही स्क्रीन पर परमिशन आती है, गैलरी एक्सेस, कैमरा एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट एक्सेस। नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, बाय कंटिन्यूइंग यू अग्री टू क्लाउड प्रोसेसिंग। बिना पढ़े आयशा ने सारा अलाउ कर दिया। उसकी सेल्फी अपलोड होती है, प्रोग्रेस बार चलता है 10%, 45%, 100% और धड़ाक से स्क्रीन पर एक खूबसूरत 80s पोर्ट्रेट आ जाता है। आयशा खुश हो जाती है उसे देखकर और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे वो स्टेटस अपलोड करती है। 3 घंटे के अंदर 1800 व्यूज। उसकी छोटी बहन जारा मैसेज करती है, दीदी उफ, बिल्कुल 1984 की हीरोइन लग रही हो। आयशा हंस पड़ती है और फोन साइड में रख देती है, लेकिन बैकग्राउंड में ऐप साइलेंटली 4327 फाइल्स अपलोड कर चुका होता है। उस रात डार्क रूम में कोई लैपटॉप पर डैशबोर्ड देख रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, न्यू यूजर सिंक्रनाइज, नेम आयशा एस, फोटो 2981, डॉक्यूमेंट 46, कॉन्टैक्ट 612। एक आदमी सिर्फ इतना बोलता है, नेक्स्ट टारगेट रेडी। आयशा चैन की नींद सो रही होती है, रात है काफी ज्यादा, उसे पता भी नहीं है कि वो जब सो रही है उसके बैकग्राउंड में, उसकी जिंदगी में जो चल रहा है वही बैकग्राउंड में उसके फोन में भी चल रहा है, पर वो इन दोनों चीज से बेफिकर है। उसे पता ही नहीं कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी में क्या लेके आने वाली है।
आयशा को ये भी नहीं पता था कि उसके हनीमून के फोटोज, आधार स्कैन, बैंक स्टेटमेंट्स और फैमिली मेमोरीज भी कोई अननोन देख रहा है। दो दिन बाद रात के 11:07 पर एक अननोन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है। नाइस 80s लुक, ओरिजिनल फोटोज और भी खूबसूरत है। आयशा का दिल एकदम से रुक जाता है। अननोन यूजर फिर से मैसेज करता है, नाइस 80s लुक, ओरिजिनल फोटोज और भी खूबसूरत है। अब सेम दूसरा मैसेज देखकर आयशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि ये अननोन कौन है और इसे मेरी 80s की फोटोज कहां से मिली और ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ओरिजिनल फोटोज भी इससे ज्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि फोटोज शेयर हो चुके हैं, फाइल्स अपलोड हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स भी जा चुके हैं। अब स्कैमर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाला है, लेकिन वो साइबर क्राइम को अंजाम कैसे देगा? या फिर आयशा उसके चंगुल से बच जाएगी या फिर उसके ट्रैप में फंस जाएगी? सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कोई गाने सुनिए, छोटा मोटा चाय पीजिए थोड़ी बहुत, और जो करना कीजिए, मैं आता हूँ।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों के गुल्लक में। 80s के इस AI फिल्टर ने सबको पागल कर दिया और पागल कर दिया है आयशा को भी। आयशा ने कभी सोचा नहीं था कि उसके फोन की सारी फाइल्स बैकग्राउंड ऐप में सब क्लाउड पे अपलोड हो चुकी होगी, और क्लाउड में अपलोड होने के बाद किसी एक स्कैमर ने उसे मैसेज भी कर दिया कि भाई आपकी फोटो तो खूबसूरत है लेकिन ओरिजिनल फोटोज और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो देखते हैं आगे स्कैम कैसे होता है। घर में सब सो चुके थे, बारिश हो रही थी, आयशा बेड पर बैठी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और जैसे कि आप जानते हैं उसको एक मैसेज आया था अननोन का कि ओरिजिनल फोटोज और भी ज्यादा खूबसूरत है। आयशा को अब लग रहा था कि कोई उसके साथ चीप प्रैंक कर रहा है, उसने रिप्लाई नहीं किया। 5 सेकंड बाद एक और मैसेज आया, इस बार एक ब्लर्ड फोटो थी। फोटो में वो खुद थी, उसके बेडरूम का मिरर था और वो एक प्राइवेट सेल्फी थी जो कभी किसी को भेजी ही नहीं होती। फोटो में वो खुद थी, उसके बेडरूम का मिरर था और वही प्राइवेट सेल्फी जो कभी किसी को उसने भेजी ही नहीं थी। उसके हाथ से फोन गिर जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, अचानक से उसके माथे पर पसीना आने लगता है। अब वो धीरे धीरे पैनिक होने लगती है, उसे घबराहट महसूस होती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और इसी सोच में 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वो पूरी रात जागी रहती है और रात जागते जागते सुबह हो जाती है और सुबह 6 बजे उसको एक मेल आता है। मेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वी ओन योर लाइफ, तुम्हारे फोन के कंप्लीट बैकअप हमारे पास है, 48 घंटे में 2,00,000 क्रिप्टो में ट्रांसफर करो नहीं तो हमारी सुबह 6 बजे ईमेल आता है आयशा को। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वी ओन योर लाइफ, तुम्हारे फोन के कंप्लीट बैकअप हमारे पास है, 48 घंटे में 2,00,000 क्रिप्टो में ट्रांसफर करो नहीं तो तुम्हारी प्राइवेट फोटोज, आधार, बैंक डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स पब्लिक कर देंगे। और नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है, 47 आवर्स 58 मिनट्स 12 सेकंड्स लेफ्ट, 11 सेकंड 10 सेकंड 9 सेकंड। और आयशा रो पड़ती है, रोते रोते वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने फोन की गैलरी खोलती है, उसकी सब फोटोज वही थी और वो सोचने लगती है जब फोन में सब है तो इसके पास सारी फोटोज कैसे चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका डेटा कॉपी हुआ तो हुआ कैसे। अब धीरे धीरे उसकी टेंशन बढ़ती जाती है और इसी टेंशन में वो स्कूल के लिए रेडी होती है और रेडी होके वो स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल का कॉल आता है उसे, आयशा जी प्लीज ऑफिस में आइए। ऑफिस में 3 टीचर्स चुप बैठे थे, प्रिंसिपल ने फोन दिखाया, एक वायरल इमेज थी फोन में, आयशा का चेहरा किसी और औरत के बॉडी पर AI से चिपकाया गया था। डीप फेक इतना रियलिस्टिक था कि पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो असली है। आयशा की आंखों से आंसू निकल गए, सर ये फोटो फेक है, आयशा ने रोते हुए कहा। प्रिंसिपल ने तुरंत इमेज डिलीट करवाई लेकिन तब तक वो दूसरे ग्रुप में पहुंच चुकी थी। एक ही दिन में आयशा की पूरी रेपुटेशन खतरे में आ गई थी। समीर घर आया, समीर आयशा का पति है,
आयशा परेशान होकर जब स्कूल से घर आती है तो वो चुपचाप बैठी होती है और समीर घर आता है और आयशा को चुप बैठा देखता है और बोलता है कि सच बताओ आयशा क्या हुआ। आयशा ने पूरा फोन उसके हाथ में दे दिया। 2 मिनट तक समीर सोचता रहा कि आयशा ऐसे क्यों कर रही है, फिर उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। और ये सुनते ही आयशा जोर से रो पड़ी। कभी कभी एक सेंटेंस पूरी दुनिया का बोझ हल्का कर देता है, लेकिन फिलहाल आयशा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके फोटोज वायरल होने लगे थे, झूठे डीप फेक्स बनने लग गए थे, बहुत सारी चीजें उसके कॉलिग्स को शेयर होने लगी थी। अब धीरे धीरे उसने सोचा कि इस मुसीबत से निपटना बहुत जरूरी है और समीर ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। और क्या, जब आप मुसीबत के समय परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आप बस यही कोशिश करते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो या जो आपका साथी है या जो आपका हमसफर है, वो बस आपका हाथ थामकर आपके साथ खड़े रहे और बस आपसे इतना कहे कि कुछ नहीं, मैं हूं ना, मिल बांट कर संभाल लेंगे। और समीर ने आयशा को हिम्मत दी और कहा कि हम हार कर चुप नहीं बैठेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अगली सुबह वो मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर रितिका देशमुख उन्हें पेशेंटली सुनती है। सबसे पहले पैसे नहीं देने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फोन कनेक्ट करती है रितिका और कहती है कि सर एक केस आया है, आपसे उस पर बात करनी है। रितिका और फोरेंसिक टीम वो केस डिस्कस करते हैं और फोरेंसिक टीम उस केस को चेक करने में लग जाती है। अब चेक करते करते पता चलता है कि गैलरी सिंक्रोनाइज हुई है आपके फोन की, कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्टेड हो चुके हैं, पीडीएफ इंडेक्स हो चुके हैं और लोकेशन मेटाबेस से कॉपी हो चुका है। रितिका बोलती है कि आयशा जी प्रॉब्लम फोटो नहीं परमिशन थी, फेक ऐप ने क्लाउड के नाम पर आपका डेटा अपलोड कर दिया। मतलब मेरा आधार भी।

आयशा ने पूछा। जी, और इसलिए वो आपको साइकोलॉजिकली टारगेट कर रहा है। अब आयशा अपनी प्रॉब्लम की मेन जड़ जान चुकी है, तो वो देखती है कि आगे क्या करे। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर रितिका उससे कहती है कि आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको ट्रस्ट करना है हम पर कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को झेलते हैं। शाम को ब्लैकमेलर का एक वॉइस नोट आता है, उसकी आवाज रोबोटिक थी। कल 6 बजे तक पैसे नहीं मिले और अगर तुम पुलिस के पास गई तो सोच लेना तुम्हारी छोटी बहन जारा के कॉलेज में फोटोज पहुंच जाएंगी। ये बात सुनते ही आयशा शॉक हो जाती है, जैसे मानो उसका खून जम चुका हो। अब सिर्फ बात आयशा या उसके कलीग तक नहीं, अब ये बात उसकी प्राइवेसी की धीरे धीरे फैमिली और फैमिली से सोशली होने लगी थी। आयशा घबराते हुए तुरंत अपना घर से निकलकर पहुंचती है इंस्पेक्टर रितिका के पास और रितिका को वो सारी बातें बताती है जो ब्लैकमेलर ने उसे कही होती है। इंस्पेक्टर रितिका सारी बात सुनकर टेबल पर जोर से हाथ मारती है और कहती है, कल वो सोचेगा शिकार डरेगा, लेकिन कल शिकार नहीं, पुलिस उसका इंतजार करेगी। रितिका अब एकदम तैयार हो चुकी है आयशा को बचाने के लिए, और आयशा जो काफी डरी हुई है, काफी परेशान है, काफी इमोशनली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही है। शायद हम उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते, लेकिन आप ये समझिए दोस्तों कि कैसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से इतना बिगाड़ लिया है कि शायद अब वो जिंदगी कैसे संभले ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पुलिस अब तैयार हो चुकी है। या तो ब्लैकमेलर जीतेगा या फिर पुलिस। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सुपर हिट्स गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट इंदुस आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे आयशा की कहानी, किस तरीके से वो डीप फेक का शिकार बन चुकी है और इंस्पेक्टर रितिका अब ठान चुकी है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस ब्लैकमेलर को पकड़ के रहेगी और उसे सबक सिखाएगी। ब्लैकमेलर जो है उसकी डिमांड है 2 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में, और ब्लैकमेलर धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी चीजें, उसकी फोटोज, उसके आयशा के कॉलीग से लेकर अब धमकी दे चुका है कि वो फैमिली में भी शेयर करेगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। साइबर क्राइम सेल का ऑपरेशन रूम, बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। 15 मिनट का काउंटडाउन था। रितिका ने आयशा से कहा, जो भी हो घबराना मत, आज हम उसे पकड़ेंगे। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने व्हाट्सएप खोला, ब्लैकमेलर का मैसेज था, वॉलेट एड्रेस रेडी, पैसे भेजो। रितिका ने इशारा किया, आयशा टाइप करती है, मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूं, बस 5 मिनट दो। मैसेज डिलीवर्ड, टाइपिंग। साइबर टीम के मॉनिटर्स पर डिजिटल सिग्नल्स एक्टिवेट हो गए और धीरे धीरे अब साइबर सेल अपना काम करने लगा। वहां पे साइबर सेल में रितिका के साथ फॉरेंसिक ऑफिसर कबीर भी थे। कबीर ने बोला, मैम ये जो है ब्लैकमेलर, ये VPN यूज कर रहा है, लेकिन इसने एक मिस्टेक कर दी। ब्लैकमेलर ने क्रिप्टो वॉलेट वेरीफाई करते वक्त अपना रियल इंटरनेट कनेक्शन 8 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज कर दिया। और कबीर ने चिल्लाया, IP लॉक्ड। लोकेशन फ्लैश हुई डोंगरी, साउथ मुंबई। पुलिस की 2 टीम्स तुरंत वहां के लिए निकल गई, तुरंत। अब देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक छोटी मिस्टेक जो 8 सेकेंड की थी, पुलिस ने उसको किस तरीके से पकड़ लिया। पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है, उन्हें नजर आता है एक पुरानी बिल्डिंग का 3रा फ्लोर। दरवाजा तोड़ते ही पुलिस अंदर घुसती है रूम में, 6 लैपटॉप, 14 हार्ड ड्राइव्स और हजारों फोल्डर्स पर इतने सारे नाम, महक, ऋतु, सना, पूजा, आयशा, निकिता, ना जाने कितने सारे नाम। इंस्पेक्टर रितिका ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं, पूरा साइबर रैकेट है। कॉर्नर में बैठा अमन शॉक में खड़ा हो गया। उसके लैपटॉप पर वही फेक ऐप का एडमिन पैनल खुला हुआ था। स्क्रीन पर लिखा था, यूजर 18,426। अब पुलिस की टीम ने पूरे साइबर रैकेट को पकड़ लिया था और वो वहीं पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के नाम के फोल्डर्स वहां पर मौजूद थे कि पुलिस परेशान हो गई कि अब तक कितने लोग इन लोगों का शिकार बन चुके होंगे। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अरमान खुद एक प्रोग्रामर था। उसने वायरल 80s ट्रेंड देखकर फेक AI फिल्टर बनाया, इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए, लोग खुद ऐप डाउनलोड करने लगे और परमिशन देने लगे, और परमिशन देते ही उनका डेटा ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सेव हो जाता था, अपलोड हो जाता था। फिर AI से उन फोटोज के डीप फेक बनाए जाते थे, उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, कलीग तक फोटोज पहुंचाए जाते थे। किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए, और धीरे धीरे ये इतना बड़ा रैकेट बन चुका था कि इन्होंने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों से ले लिए थे। ये सारी चीजों को देखते हुए आयशा बहुत ज्यादा शॉक में थी कि मुझसे पहले भी इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है।
आयशा अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स के सामने खड़ी होती है। स्क्रीन पर उसका 80s का पोर्ट्रेट था। सब स्टूडेंट मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने अगला स्लाइड दिखाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर ब्यूटीफुल फिल्टर सेफ नहीं होता। आयशा ने इन सारी चीजों को, जिस चीजों से वो सफर कर रही थी, उसे ही उसने फिर अपना हथियार बनाया और स्कूल में सबको दिखाया, ताकि जिस चीज से या जिस प्रॉब्लम से वो गुजर गई

आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सारे बच्चों ने ये उनकी बात सुनी और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कुछ दिनों बाद आयशा ने अपना कॉन्फिडेंस तो वापस पा लिया और अरमान को आईटी एक्ट के तहत चार्जेस भी लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या ये फिल्टर्स का बनना बंद होगा? नहीं होगा। क्या साइबर का बनना, साइबर क्राइम का होना कम होगा? नहीं होगा। फिल्टर बनते रहेंगे, क्राइम्स रेट बढ़ते रहेंगे। आज आयशा शिकार थी, कल पूजा होगी, फिर कोई कोई कोई कोई कोई कोई शिकार बनते रहेंगे। लेकिन ये कम कैसे होगा? कम होगा आपकी और हमारी समझदारी से। हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल ना करके एक ऑथेंटिकेट ऐप को इंस्टॉल करें, और ऑथेंटिकेट ऐप को भी जब आप इंस्टॉल करेंगे उसकी सारी परमिशंस को पढ़िएगा, और कोई भी ऐसी परमिशन को ओके मत करिए जिससे आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। हम कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो हाँ, हर चीज के कान होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सदाबहार कहानियां, और मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी चीज, सावधान रहिए। ट्रेंड बनाना जरूरी है, फोटोज बनाना जरूरी है, पर फोटोज बनाने के चक्कर में अपनी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस, ऑल गुड ना? भाई हमारा तो फर्ज है आपका हालचाल पूछना, क्योंकि आप हैं हमारे आचार्य 90 एफएम के खास दोस्त, और दोस्तों के साथ स्वाद का जायका निभाना हमें बखूबी आता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मोरिंगा सूप। मोरिंगा मींस मराठी में शेवगा। क्या आप जानते हैं सूप का इतिहास बहुत पुराना है? ये तब की बात है जब प्राचीन मानव ने पानी उबालने के बर्तन बनाने के बाद मांस, हड्डियां और पोषक तत्वों को निकालना शुरू किया था। हिंदी में और भारतीय संस्कृति में इसे शोरबा इस नाम से भी जाना जाता है। भारत में चरक संहिता जैसे ग्रंथों में दाल, जड़ी बूटियां और मसालों से बने यूश मींस शोरबा का जिक्र है। सूप शब्द यूरोपियन संस्कृति से आया है, जिसका मीनिंग ब्रेड को शोरबा में डुबोकर खाना था। दक्षिण भारत का पारंपरिक रसम ये भी इसी प्रकार का प्राचीन औषधीय और पाचक पेय है। दावत की शुरुआत में भूख को बढ़ाने के लिए या बीमार इंसान को एनर्जी मिले इस भावना से सूप परोसा जाता था। इसका हर चम्मच जीभ को स्वाद और मन को संतुष्टि ही देता है। तभी तो रेस्टोरेंट के स्टार्टर से लेकर इंस्टेंट फूड वाले पैकेट में भी सूप मिल जाता है। वैसे सूप के कई सारे फ्लेवर्स हैं। ये एक फेमस व्यंजन है, तभी तो इसके कई सारे फ्लेवर्स भी होने ही चाहिए। वेज और नॉन वेज इन दोनों प्रकारों में सूप की अपनी एक अलग सी पहचान है। मोस्टली स्वीट कॉर्न वेज सूप, मंचाव सूप, क्रीम ऑफ टमेटो सूप, पालक सूप, ऐसी कई सारी वैरायटीज तो ऑलरेडी फेमस है और ये सब एकदम कॉमन है। हमारे आचार्य 90 एफएम के प्यारे ऑडियंस के लिए आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी टाइप वाला मोरिंगा सूप। वैसे मोरिंगा या सहजन, जिसे ड्रमस्टिक्स भी कहा जाता है, इसका सूप बनाना एकदम आसान है। सर्दी हो या गर्मी, मोरिंगा सूप हर सीजन में हमारे पेट और हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि मोरिंगा एक सुपर फूड है। इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में आप मोरिंगा को जरूर शामिल कीजिए। अब चलिए हम मोरिंगा सूप की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। मोरिंगा सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मोरिंगा मींस ड्रमस्टिक्स 5-6, बड़ा टमाटर 1, छोटा प्याज 1, अदरक लगभग 1 इंच, लहसुन 4 कली, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, साबुत जीरा आधा चम्मच, देसी घी 1 चम्मच, काली मिर्च मींस ब्लैक पेपर 3 या 4, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 4 चम्मच, नींबू लगभग आधा, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। रेसिपी को सुनने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सारे ड्रमस्टिक्स को अच्छे से धो लेना है, फिर उसे 3-4 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हम प्याज और टमाटर के टुकड़े कर लेंगे, फिर अदरक और लहसुन को छील कर उसको भी बारीक टुकड़ों में काट लेना है। काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लेना है। जीरा को भी हम कूट लेंगे। अब हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन या कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे लगभग 5 बड़े ग्लास भर के पानी, फिर हम उसमें डालेंगे मोरिंगा और टमाटर, उसके साथ हम प्याज, अदरक और लहसुन को भी ऐड कर देंगे। अब हल्दी और नमक मिलाकर हम इसे पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज कर सकते हैं। इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नाइडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। कढ़ाई वाले मिश्रण को हमें लगभग 20-25 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए। ऐसा करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा टाइप बन जाएगा। तब हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद इस मिश्रण को एक छलनी की मदद से छान लेना है। हमें उसके पानी को सब्जियों से अलग कर लेना है। उसके बाद सभी सब्जियों को मैशर से दबा लीजिए। फिर मिक्सर में उस सॉलिड वाले मिश्रण को पीस लेना है। ऐसा करते समय उसमें लगभग एक कटोरी भर के पानी हम ऐड करेंगे। फिर इस पेस्ट को भी छलनी की मदद से छान लेना है। एक चम्मच की मदद से इस पेस्ट को दबाकर इसका सॉलिड और लिक्विड पार्ट हम सेपरेट कर देंगे। अब लिक्विड पार्ट को साइड में रखे सब्जियों के पानी में मिक्स करना है। फिर इस तैयार शोरबा में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ढेर सारा प्याज। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नाइडी एफएम और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा मोरिंगा सूप अब बस तैयार हो रहा है और हम अब लेंगे एक तड़का पैन। उसमें हम गरम करेंगे थोड़ा सा देसी घी। उस देसी घी में हम डालेंगे लगभग एक चुटकी भर के जीरा। फिर इस तड़के को हम तैयार शोरबा पर डाल देंगे। भाई वाह, क्या महक। अब इसे हम निकालेंगे सुंदर से एक सर्विंग बोल में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। भाई वाह, मजा आ गया। अब एकदम आराम से बैठकर अपनों के साथ मिल बांटकर इस मोरिंगा सूप का लुक आप मजे से उठा सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 98 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। मोरिंगा सूप तो हमने बना लिया। वैसे बारिश के मौसम में मोरिंगा तो एकदम आसानी से मिल जाता है। मोरिंगा को पराठा, दाल, सब्जियां या सिर्फ बॉईल करके भी खाया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसे पकाकर, चबा चबा कर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन खाने की चीजों का फॉर्म बदल कर उसे पेश करना, इसे ही तो कहते हैं स्वाद का जायका निभाना। ऑडियंस जी, एम आई राइट? इस मोरिंगा सूप की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है हेल्दी मोरिंगा सूप। निखारने के लिए अपना रूप, इसमें नहीं है कोई अनाज, मोरिंगा टमाटर और थोड़ा सा प्याज। स्वाद को बढ़ाने डाला ब्लैक पेपर, इसे डालते ही टेस्ट हुआ बेटर। सब्जियों को उबालकर बनाया पेस्ट, निचोड़कर उसको फेंक दिया वेस्ट। मोरिंगा का सूप है एकदम देसी, ओरिजिनली शोरबा और सूप विदेशी। अपनों के संग शेयर करेंगे खाना, आचार्य 90 FM पर मन चाहा गाना। खाने और गाने की जब हो जुगलबंदी, एंटरटेनमेंट के लिए भाई नो पाबंदी। खाने और गाने का इस शो पर मेल, मोरिंगा सूप में नहीं है तेल। इंद्रधनुष में मिले बारिश और धूप, बनाइए मोरिंगा सूप और फिर निखरेगा रूप। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा मोरिंगा सूप तो बन गया। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। भाई, गणेश जी का फेवरेट खाना कौन सा है और बच्चों को खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? जनाब, गणेश जी का फेवरेट खाना है मोदक और बच्चा पार्टी का फेवरेट होता है चॉकलेट। चॉकलेट और मोदक को एक साथ मिलाकर बनता है चॉकलेट मोदक।
गणेश जी का आगमन हम सब के लिए खुशियों वाला माहौल बनाता है, है कि नहीं? वैसे मोदक तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे उकड़ी से मोदक, तलेले मोदक, ड्राई फ्रूट्स मोदक वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे आचार्य 90 एफएम के प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मोदक। क्या आप मोदक इस शब्द का अर्थ जानते हैं? मोदक शब्द की खोज संस्कृत के मोद इस शब्द से हुई है। मोद मींस खुशी, आनंद या प्रसन्नता, ये होता है। मोद मींस खुशी, आनंद या प्रसन्नता, ये बेसिकली महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व में मोदक का भोग भगवान गणेश जी को लगाया ही जाता है। मोदक का मतलब है आनंद लेना, मींस एंजॉय कीजिए। मोदक को हिंदी में लड्डू के नाम से जाना जाता है। वैसे लड्डू मींस गोल मटोल मिठाई और मोदक मींस मुकुट की तरह दिखने वाली मिठाई। चावल या गेहूं के आटे में गुड़ और नारियल का मिश्रण, जिसे मराठी में सारण कहा जाता है, वो भर दिया जाता है। फिर उसे भाप पे पकाकर या डीप फ्राई करके परोसा जाता है। 5, 21, 51, 101 या 108 मोदक बनाकर भगवान श्री गणेश जी को इसका भोग बड़े प्यार से लगाया जाता है। चलिए अब हम चॉकलेट मोदक बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सूखा नारियल मींस, या तो फिर आप ले सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट 2 कटोरी, मिल्क पाउडर 2 कटोरी, दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कटोरी, चॉकलेट पाउडर 1 कटोरी, देसी घी 1 या 2 चम्मच, मिल्क मसाला 2 चम्मच या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता सब 2-2। दैट्स इट। अब हम चॉकलेट मोदक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में हम दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। इसे चम्मच से चलाते हुए लगभग 20 मिनट तक पका लेना है। थोड़ी देर बाद उस कढ़ाई में तैयार होगा इंस्टेंट खोया मींस मावा। उसे हम निकालेंगे एक प्लेट में। फिर हम लेंगे एक पैन। उस पैन में हम नारियल को हल्का सा भून लेंगे। अब हम शक्कर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे इंस्टेंट मावा में हम ऐड करेंगे शक्कर का पाउडर और चॉकलेट पाउडर। अपने हाथों से आप इसे मिक्स कीजिए। उसके बाद हम इस मिश्रण में ऐड करेंगे रोस्टेड नारियल। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। भाई हमारे चॉकलेट मोदक का मिश्रण अब तैयार हो गया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद हमें लेना है मोदक का मोल्ड। उस मोल्ड को अंदर की तरफ हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। इससे हमारे मोदक में हल्की सी शाइन आ जाएगी। फिर हम उसमें भरेंगे तैयार मिश्रण। इसे अच्छे से दबाकर भरना है। अब तैयार मोदक को उस मोल्ड से बाहर निकालिए। इस स्टेप को आप रिपीट करते रहिए। इस तरह से हम सारे मिश्रण के मोदक बना लेंगे। वाह वाह क्या बात। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में बड़ी श्रद्धा से हम रखेंगे सारे चॉकलेट मोदक। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े या मिल्क मसाला। वाह वाह एकदम जबरदस्त डेकोरेशन है। उसके बाद एकदम सात्विक भाव से हम भगवान श्री गणेश को इस चॉकलेट मोदक का भोग लगाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस चॉकलेट मोदक की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है चॉकलेट वाले मोदक। आ गए गणेश जी, चलो करें स्वागत। अब मोदक बनाने की डाल ही लो आदत।
खोया के मिश्रण को हमने बनाया स्वीट, गणपति बाप्पा को मोदक की ट्रीट, विघ्नहर्ता का रूप हमारे प्यारे गणेश, ज्ञान और प्रगति का देते हैं संदेश, गणेश चतुर्थी की पावन तिथि बाप्पा के साथ, गणेश चतुर्थी की पावन तिथि बाप्पा के साथ रिद्धि और सिद्धि, बाप्पा के लिए मूषक की सवारी, चॉकलेट मोदक बनाने की हमने की

जी सुरीली सी सरगम। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाया एक हेल्दी वाला सूप। ड्रमस्टिक्स को टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के साथ हमने उबाला। फिर उसमें नमक, काली मिर्च डालकर देसी घी वाला छौंक लगाया। इस हेल्दी सूप को धनिया और नींबू के रस के साथ हमने फाइनल टच दिया। फिर रोस्टेड पापड़ के साथ इसे परोसकर हमने अपने दोस्तों की सेहत का खास ख्याल रखा। ऑडियंस जी, रखा के नहीं जी, बिल्कुल रखा। फिर हमने बनाया चॉकलेट मोदक। भगवान गणेश के स्वागत में हमने बच्चा पार्टी स्पेशल चॉकलेट मोदक को बड़े प्यार से बना ही दिया। इंस्टेंट खोया, डेसिकेटेड कोकोनट, चॉकलेट पाउडर, इन सबको शक्कर के साथ मिलाकर हमने मोल्ड में डाला। फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ उसे डेकोरेट भी किया। इस प्रकार हमने बाप्पा के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी सेवा प्रस्तुत की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का शो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर बताइए। और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आप हमारे आचार्य 90 FM चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की विलक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं 7 अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होते हैं। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच 7 लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यशवी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई, और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजर्स धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुरा हूं, गाइड। उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलू वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है, बापुराव ने जवाब दिया। जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे? उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे।

उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया। अंकल, आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी। क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे। विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया। टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के चलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई। उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी, मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी, पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हां में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के बुलेटिन।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मीरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी। उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है। जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था। पेज पर खून जैसा लगा था और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी। बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा, वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा।

लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक। केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हक किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी। सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं। उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले
उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बाबूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करता है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था, और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है, और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना भाई? दोस्तों का हालचाल पूछना मींस अपनापन जताना होता है, और अपनापन जताना मतलब स्वाद का जायका निभाने वाली बात है, है कि नहीं? तो चलिए, अपनापन जताने के लिए हमें एक बहाना मिल गया है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ऋषि पंचमी, और इस ऋषि पंचमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में बनती है एक पौष्टिक भाजी। इसमें सीजनल वेजिटेबल्स और कंदमूलों का उपयोग किया जाता है, और खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही सब्जियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें उगाने में बैल या किसी जानवर की मेहनत का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना कांदा लहसुन वाली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है। कद्दू मींस लाल भोपला, तुरई मींस दोड़का, खीरा, भिंडी, ताजा मक्का मींस भुट्टा और मूंगफली, ऐसी चीजों को बिना कांदा लहसुन का तड़का लगाकर इस ऋषि भाजी को बनाया जाता है। चलिए अब हम ऋषि भाजी की रेसिपी को सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कसा हुआ नारियल पाव कटोरी, हरी मिर्च 2, आलू मींस अरबी के पत्ते बारीक काटकर आधा कटोरी, मटर के दाने आधा कटोरी, कटी हुई वाल पापड़ी आधा कटोरी, कद्दू मींस लाल भोपड़ा आधा कटोरी, बॉइल्ड मकई के दाने आधा कटोरी, तोरई मींस दोड़का आधा कटोरी, खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े पाव कटोरी, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, इमली का पल्प 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, पानी आवश्यकता के अनुसार, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले हम इस ऋषि जी भाजी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर के जार में ताजा नारियल और हरी मिर्ची को डालकर पीस लेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम भाजी के लिए मसाला बना लेंगे। फिर हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे आलूची पाने। इसे लगभग 1 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वाल पापड़ी। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कद्दू, तोरी, मकई के दाने, खीरा और हरी मटर के दाने। इन्हें अच्छे से भूनकर लगभग 2 मिनट तक चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और नारियल वाला मसाला, उसके साथ नमक और इमली का पल्प। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बनाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी मींस लगभग आधा ग्लास पानी डालकर हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सब्जियाँ मॉइस्चर वाली हैं, इसलिए इसे पकाते समय ज्यादा पानी मत डालिए, और इमली का पल्प यूज करने से आलूची पाने मींस अरबी के पत्ते आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 सीटी आने तक पका लेना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले रुशीची भाजी को हमने पूरी तरह से पका लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वीट कॉर्न के दाने की बजाय आप साबुत स्वीट कॉर्न को उबालकर 2-3 टुकड़ों में काटकर इस ऋषि की भाजी में डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में हम डालेंगे तैयार रुशीची भाजी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ताजा नारियल कद्दूकस करके डाल लेंगे। भाई वाह, ये तो एकदम टेम्पटिंग दिख रहा है। फिर उसके साथ हम परोसेंगे गर्मा गर्म रोटी या फूली हुई गर्मा गर्म रोटी। उसके बाद हम भगवान को इसका भोग लगाएंगे। इस रुशीची भाजी की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से भोग लगाने की मेथड बिल्कुल सही होगी। भगवान को भोग लगाने के बाद हम अपनों के साथ मिल बांट कर इस रुशीची भाजी का लुफ्त एकदम सात्विकता से उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे खाकर आपको हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। इसलिए इस रुशीची भाजी को आप जरूर बनाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का ये तरीका आप अपना ही लीजिए और अपनों के साथ मिल बांटकर अपनी खुशी को दोगुना कीजिए। इस रुशीची भाजी के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है सात्विक भाजी। आरती के समय हो गए धार्मिक, रुशीची भाजी एकदम सात्विक, कद्दू मटर और भिंडी संग आ गई मकई, इसमें कांदा लहसुन नहीं है कतई, अरबी के साथ डाली थोड़ी सी इमली, रुक गई बारिश और आ गई तितली, मिर्ची के साथ डाला नारियल सफेद, अपनापन जताने से दूर होंगे मतभेद, गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट होगी ऋषि पंचमी, ऋषि भाजी का टेस्ट एकदम मखमली, यूं ही देते रहिए अपनों का साथ आचार्य 90 FM पर अपनेपन की बात।

वही त्योहार का मतलब होता है खुशियाँ, और आस पड़ोस में खुशियाँ बांटने का ये मौका आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ हमने सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नेडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई ऋषि पंचमी स्पेशल ऋषि जी भाजी तो हमने बना ली, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। श्री गणेश जी के आगमन के साथ महालक्ष्मी मीन्स गौरी जी का भी आगमन होता है। गणेश चतुर्थी के तीसरे या चौथे दिन गौरी जी आ जाती है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी मीन्स गौरी पूजन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इस समय घर की बेटियों को बड़े प्यार से भोजन कराने की प्रथा है। पहले दिन गौरी आवाहन होता है, तब महाराष्ट्रियन लोग भाजी भाकरी मीन्स रोटी और सब्जी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है, तब महाराष्ट्रियन किचन में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, जैसे कि पूरनपोड़ी, खीर, पंचामृत, 5 प्रकार की सब्जियां, कचुंबर के प्रकार, दाल चावल और दिवाली पर बनने वाली मिठाइयां वगैरह वगैरह। इस दिन का सेलिब्रेशन एकदम खास होता है, क्योंकि गौरी भोजन का शुभ अवसर इसी दिन होता है। फिर तीसरे दिन आरती करके गौरी विसर्जन किया जाता है, तब दही भात का भोग लगाया जाता है। आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पूरनपोड़ी। 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्रीयन ग्रंथ चक्रदत्त में दाल और गुड़ के मीठे मिश्रण पूरन पाक का जिक्र किया है। पूरन मीन्स मीठी दाल और पोली मीन्स रोटी। मीठी दाल वाली रोटी इज इक्वल टू पूरन पोली। इसे गौरी पूजन, होली और गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ अवसरों पर विशेष भोग के रूप में बनाया जाता है। वैसे हमारे गुजरात और दक्षिण भारत में भी पूरन पोली बनती है। चलिए अब हम पूरन पोली की रेसिपी को सुनते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पूरन के लिए मींस स्टफिंग के लिए चना दाल 1 बड़ी कटोरी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी 3 कटोरी, तेल 1 चम्मच, ब्राउन गुड़ 1 कटोरी। ब्राउन गुड़ येल्लो के हिसाब से ज्यादा हेल्दी है। जायफल पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच। अब आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कटोरी, मैदा 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए पानी आटा गूंथने के लिए, देसी घी जरूरत के मुताबिक। चलिए अब हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूरन मीन्स स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़ी कटोरी में चना दाल को पानी डालकर भिगोकर रखेंगे। इसे लगभग 2-3 घंटे तक भिगोकर साइड में रखना है। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा पानी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर प्रेशर कुकर में पकाना है। लगभग 5 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/2 घंटे के बाद हम दाल को बाहर निकालेंगे। उस पकी हुई चना दाल से हम सारा पानी हटा देंगे। इस हटाए हुए पानी को आप चाहे तो कटाची आमटी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पकी हुई दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। इस मिश्रण को मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर पका लेना है। थोड़ी देर में मींस लगभग 15 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए, फिर ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जब ये मिश्रण गोला टाइप बने तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे ठंडा कर लेना है। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी सी बादाम की पाउडर। यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूं, साबुत इलायची को 2-4 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में डालिए। ऐसा करने से इलायची पाउडर एकदम आसानी से बनती है। जायफल का पाउडर यूज करने के बदले हम कद्दूकस किया हुआ जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बादाम का पाउडर ऐड करने से पूरन पोली का स्वाद और ज्यादा निखर जाता है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग वाले मिश्रण को हम पूरन यंत्र में डालकर इसको स्मूथ बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इस दौरान हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्टफिंग वाले मिश्रण से चना दाल का दाना निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरन मींस स्टफिंग अब हो गया है तैयार। अब इस पूरन के हम नींबू के साइज के गोले बना देंगे। उसके बाद पूरन पोली का बाहरी हिस्सा मींस कोटिंग को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा और मैदा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक, फिर आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूथना है, मींस रेगुलर वाली रोटी जैसा आटा बनाना है। इसमें थोड़ा तेल मिलाकर हम फिर से गूथेंगे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक इसे ढककर रखना है। ऐसा करने से रोटी का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेम आलू पराठा की मेथड से हम पूरन पोली को बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लीजिए, उसे कटोरी का आकार दीजिए, उसके अंदर चना दाल वाली स्टफिंग को भर दीजिए, फिर उसे बड़ी सावधानी से हम बंद करेंगे, फिर चकला और बेलन की मदद से इसे एकदम प्यार से बेलना है। ऐसा करते समय हम थोड़ा आटा छिड़क देंगे। इस दौरान आप एक बात का खास ध्यान रखिए, पूरन पोली बेलते समय उसे आराम से ही बेलना है, उसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना आए इसका ख्याल हमें रखना है। इस दौरान हम गैस पर तवा गरम करेंगे। अब तैयार पूरन पोली को एकदम संभाल कर उस तवे पर पलट देना है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, गेहूं की रोटी या पूरन पोली बनाते समय उसे फुलाने के लिए एक ट्रिक है। हम तवे पर जब रोटी सेके तब 3-4 सेकंड के बाद उसे पलट देना है, फिर गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिए। उसके बाद 1.5-2 मिनट तक इसे सेक लेना है। चम्मच की मदद से रोटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक कीजिए। जब तक उस रोटी के नीचे वाले हिस्से पर ब्लैक डॉट्स ना आए उसे पकने दीजिए। कुछ समय बाद रोटी पर डॉट्स दिखने लगेंगे, फिर एकदम संभाल कर उसे पलट दीजिए। अब गैस की फ्लेम को हाई मींस तेज कीजिए। ऐसा करने से रोटी एकदम पूरी तरह से फूल जाएगी, है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस तरह से सारी पूरन पोली हम बना लेंगे। हमें इन्हें ठंडा करने के लिए फैला कर रखना है। अब आगे क्या करना है, तो भाई आगे हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट, उसमें एकदम संभाल कर हम रखेंगे सारी पूरन पोली। उसके ऊपर हम लगाएंगे शुद्ध देसी घी, इसको मराठी में कहते हैं तुपाची धार सोडने। उसके साथ हम रखेंगे दूध की सुंदर सी कटोरी।
आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिर उन पूरनपोली की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे तुलसी पत्र। भाई वाह, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। उसके बाद एकदम प्रसन्न मन से हम भगवान को पूरनपोली का भोग लगाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा करने से आप एकदम अच्छा ही फील करेंगे। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर देखिए तो जनाब। फिर अपनों के साथ मिल बांटकर इस पूरनपोली का लुफ्त उठाइए। कैसे? तो भाई सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाइए, फिर अपने साफ और धुले हुए हाथों से पूरनपोली का एक निवाला लीजिए, उसे दूध की कटोरी में डुबाइए, फिर पूरनपोली का टेक्सचर फील कीजिए, उसका अरोमा भी महसूस कीजिए, इलायची और जायफल की खुशबू, आहा हा, साथ में मीठी महक और दूध की सफेद बूंदे, क्या कॉम्बिनेशन है। फिर एकदम आराम से उसे अपने मुंह में स्वाहा कीजिए, आहा, क्या बात, एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाली ये पूरनपोली तो एकदम कमाल टेस्ट करती है, और अपनों के साथ खाने से ये और टेस्टी लगती है। इस पूरनपोली की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है पारंपरिक पूरनपोली। मनपसंद त्योहार गणपति और गौरी, गौरी पूजन में बनाई हमने पूरन पोली, खुशियों से भर गया सारा संसार, पूरन पोली पर किए हमने कई संस्कार, भिगोना पकाना और पीसना ये है खाने के संस्कार, अपनापन दिखाकर दूर कीजिए अहंकार, पूरन पोली में डाली चना दाल और गुड़, इसका टेस्ट लागे एकदम ही सुमधुर, पूरनपोली के साथ आया देसी घी।

साथ में थोड़ा दूध एंड से नो टू टी। पूरनपोली का रूप जैसे मीठा पराठा, इसे पसंद करे जाट, सिख और मराठा। इलायची के साथ थोड़ा सा जायफल, हमारी भारतीय संस्कृति सबको करे सफल। गौरी गणपति का आ गया त्योहार, सात्विकता से भरा हमारा भारतीय आहार। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक सात्विक भाजी। किसी भी जानवर को जोते बिना उगने वाली सब्जियों को इस्तेमाल करके हमने रुशीची भाजी बनाई। कांदा लहसुन को यूज किए बगैर भी टेस्टी भाजी बन सकती है, इसे हमने बखूबी जाना। कद्दू, तोरी, मक्का, भिंडी, मटर, अरबी के पत्तों को नारियल और मिर्ची वाला मसाला हमने लगाया। फिर देसी घी में जीरे का तड़का लगाकर उसमें सारी सब्जियों को कम पानी में पकाया। अरबी के पत्तों के साथ हमने इमली का पल्प भी ऐड किया। इस प्रकार हमने एक सात्विक भाजी को बनाया। फिर हमने बनाई सबकी फेवरेट पूरनपोली। गेहूं और मैदा मिक्स करके आटा गूथा, फिर उसमें ब्राउन गुड़ और पकी हुई चना दाल का स्टफिंग भरकर उसे पराठे का रूप दिया। इसके साथ दूध की कटोरी और तुपाची धार मींस देसी घी हमने पेश किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस तरह से हमने गौरी गणपति को हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में भोग लगाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा को मैं करूंगी डिस्क्राइब। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: 90FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इस गर्मी वाले सीजन से कुछ राहत मिली आपको? थोड़ी सी तो मिली ही होगी। वैसे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस से मिलकर हमें तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और दोस्तों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार करना हमें बखूबी आता है। अर्ज किया है, अगर चलती रहूं मैं अपनी मंजिल की ओर तो हो सकती है इनमें से एक बात या तो मिल जाएगी मंजिल, मतलब ऑडियंस का साथ, या फिर यूं ही चलता रहेगा सफर और मिलूंगी आपसे शुक्रवार की शाम और सोमवार की दोपहर, जब साथ होंगे यहाँ ऑडियंस जी आप जैसे हम सफर, तब गर्मी की मार होगी धीरे धीरे बेअसर। स्वाद का जायका निभाने का ये वादा, मनोरंजन से भरपूर और गाने भी ज्यादा, खाने के माध्यम से दिल को लुभाना मीन्स अपनापन जताकर दोस्ती को निभाना। स्वागत है ऑडियंस जी आपका इस शो पर, नई रेसिपीज को लाई हूँ आप ही के लिए ढूंढ कर। भारतीय सीमा के रसोई वाले राज साथ में बजेंगे सुमधुर और सुरीले साज। हमारी आज की पहली रेसिपी है एक स्पेशल टाइप का लड्डू। इस लड्डू में इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल चीज गर्मी को मात देने के साथ हमारे देसी खाने को खूबसूरत भी बनाएगी। ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, दिखने में मोतियों जैसे है और इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और शरबत बनाते समय इसे यूज किया जाता है। जनाब सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब्जा की। जब सब्जा को पानी में भिगोकर रखते हैं तब ये फूलकर जेली की तरह बनता है। सब्जा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा का सेवन हर रोज कीजिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब हम इस सब्जा के लड्डू को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सब्जा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सब्जा के बीज 100 ग्राम, नारियल का पानी आवश्यकता के अनुसार। नारियल के पानी में हमें सब्जा के बीज को सोक करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 कटोरी भर के पानी मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए ताजा नारियल 1, हेल्दी वाला ब्राउन गुड 200 ग्राम, देसी घी 4 चम्मच, मिल्क मसाला 4 चम्मच या फिर काजू और बादाम 7-8। उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी काला मुनक्का 15 से 20, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1 चुटकी भर। जायफल पाउडर को यूज करना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इसकी रेसिपी को सुनने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, फिर उसमें डालिए सब्जा के बीज। हमें सब्जा के बीज को भिगोना है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इन्हें नारियल के पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब्जा के बीज को नारियल के पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप टेक्सचर आपको जब दिखे तब समझ लीजिए कि सब्जा के बीज अब यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें ताजा नारियल कद्दूकस करके लेना है। कद्दूकस मीन्स ग्रेटेड। फिर ब्राउन गुड को बारीक टुकड़ों में काटकर रेडी रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें पतले टुकड़ों में काटकर तैयार रखिए। हे भगवान, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। अब एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।
1: आंखें खुली हो या

बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सब्जा के लड्डू बनाने की तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप लीजिए एक नॉनस्टिक पैन या बड़ी सी कढ़ाई, फिर इसमें डालिए शुद्ध देसी घी, उसके बाद इसमें ताजा नारियल और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। इसे पकाते समय गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, अदरवाइज ये मिश्रण जल सकता है और आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ऐड कीजिए सब्जा के बीज। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के बाद ये मिश्रण रेडी हो जाएगा और तब तक इसे अच्छे से पकाते हुए आपको चम्मच चलाते रहना है। गुड़ और नारियल का टेक्सचर जब एक साथ मिलेगा तब इसे टेस्ट करने के लिए आपका मन जरूर ललचाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी कर लीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि सब्जा के लड्डू चखने के लिए हम भी बैठे हैं कब से बेकरार। अब आगे क्या करें तो भाई सुनिए, आगे हमें ये करना है कि इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डालना है। इसे भी मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाना है। ऐसा करते समय आपका किचन मनमोहक खुशबू से भर जाएगा। फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, इस मिश्रण को ठंडा होने दीजिए और तब तक हमें वेट करना है। लड्डू बनाने का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, फिर अपने हाथों पर आप थोड़ा सा घी लगाइए। उसके बाद तैयार मिश्रण से नींबू के साइज के लड्डू को बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर एक एक करके सब्जा के सारे लड्डुओं को आप उस प्लेट में रख दीजिए। जब सारे लड्डू तैयार हो जाए तब लगभग एक घंटे तक उन्हें सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें फैन के नीचे भी रख सकते हैं। चूंकि ये लड्डू हमने ताजे नारियल को यूज करके बनाए हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा। इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। वैसे ये सब्जा लड्डू होते हैं इतने टेस्टी कि झटपट खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी इन्हें खाने का मन करे तब आप आधा घंटा पहले इन्हें बाहर निकाल कर रखें। ऐसा करने से इसका ठंडापन कम होकर ये रूम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टेस्टी और हेल्दी सब्जा के लड्डू हो गए हैं तैयार। सुबह के नाश्ते में आप इन सब्जा के लड्डुओं को जरूर खाएं। ऐसा करने से आप दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से करेंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सब्जा के लड्डू की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है गोल मटोल लड्डू। गोल मटोल से मीठे लड्डू बनाने डाला सब्जा, इसका टेस्ट है ऐसा अनोखा कि मेरे दिल पर किया कब्जा। जब जब देखूं मैं थाल में भरे ये मीठे मीठे लड्डू, तब सारा डाइटिंग भूलकर इन पर हो जाऊं लट्टू। जब जब हो जाता संगम घी गुड़ और कोकोनट

लाइम मॉकटेल। गर्मी के लिए ये बेहद ताजगी भरा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है। इसे घर पर बनाना एकदम आसान है। खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनाया गया ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको चिल चिलाती धूप में तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा। यूजुअली मॉकटेल में ताजे फलों का रस, सिरप, जड़ी बूटियां और सोडा या कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिन पिनाकोलाडा, वर्जिन मोहितो, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और सिंड्रेला ऐसे कई सारे मॉकटेल्स फेमस हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल ये ड्रिंक लैटिन अमेरिकन अगुआ फ्रेस्का और इंडियन खीरा नींबू शिकंजी का लेटेस्ट वर्जन है। वैसे दुनिया भर के कैफे में ये काफी फेमस है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, म्हणजे आपली काकड़ी, एक बड़ी सी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां 10 से 12। चीनी या शहद स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए काला नमक 1 चुटकी, स्प्राइट 2 ग्लास, बर्फ के टुकड़े 4 या 5, ये ऑप्शनल है। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए। फिर आगे क्या? आगे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बना रहे हैं क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। ककड़ी को हमने अच्छे से धो तो लिया है। इसे यूज करने से पहले आप उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट कीजिए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।

क्योंकि कड़वी ककड़ी मीन्स खराब ककड़ी। हमें नॉर्मल टेस्ट वाली ककड़ी को यूज करना है। फिर उस ककड़ी को आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर का जार। उस जार में हम डालेंगे खीरा मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीना के कुछ पत्ते। इसके साथ आधा कप पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। जब तक ये मिश्रण एकदम स्मूथ ना हो तब तक हमें इसे मिक्सर में पीसना है। इसका स्मूथ पेस्ट बनने के बाद क्या करें? तो भाई अब हमें इसे छानना है। इसके लिए हमें चाहिए एक छलनी। उस छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम छान लेते हैं। ऐसा करने से खीरा मीन्स क्यूकम्बर के रेशे अलग हो जाएंगे। फिर उस छाने हुए स्मूथ जूस को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब उसमें मिलाना है नींबू का रस, शक्कर और थोड़ा सा नमक। फिर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लीजिए 2 सर्विंग ग्लास। फिर हमेशा वाला क्रिस्टल डेकोरेशन मीन्स नमक और शक्कर वाला डेकोरेशन करना है। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा पानी लगाइए। उसके बाद एक छोटी प्लेट में हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच नमक। इस प्लेट में नमक और शक्कर को मिक्स करना है। अब उन गीले किनारों वाले ग्लास को उस प्लेट में पलट दीजिए। I mean to say, उन्हें अपसाइड डाउन करके उस प्लेट में रखिए। फिर एकदम आराम से उन्हें सीधे रखिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद क्या करना है तो जनाब अब सुनिए आगे। अब बड़ी नजाकत से उन ग्लास में हम डालेंगे क्यूकम्बर लाइम का जूस। आप चाहे तो सबसे पहले बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए और फिर क्यूकम्बर लाइम का जूस डालिए। वैसे मुझे पर्सनली विदाउट आइस वाले मॉकटेल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब उस क्यूकम्बर लाइम जूस के ऊपर हमें डालना है स्प्राइट। फिर इस मिश्रण को 1 चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। अब बारी आती है फाइनल टच की। उस ग्लास के किनारों पर हम लगाएंगे नींबू की पतली स्लाइस और उसके साथ रिफ्रेशिंग पुदीना की एक सुंदर सी पत्ती। अब इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की सुंदर छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चुटकी भर ग्रेटेड अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट जिंजर भी इसका टेस्ट एकदम कमाल का ही होगा। इस तरह हमारा क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल हो गया है एकदम तैयार। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट अपने किचन में जाइए और फटाफट से क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को बनाइए। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है राहत वाला मॉकटेल। झुलसती सी गर्मी से जब पानी हो राहत और ककड़ी को खाने की मुझे हो चाहत, तब क्यों जाए हम कोई रेस्टोरेंट या होटल, घर में ही बनाएंगे टेस्टी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल। गर्मी से बेहाल होकर आए जब पसीना, तब ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मांगे कोई हसीना। उस वक्त जरूर पेश कीजिए अनोखा सा नगीना, जिसमें है खीरा और रिफ्रेशिंग पुदीना। खीरा और पुदीना संग डालो थोड़ा स्प्राइट, इसको सिप करके एक्सप्रेशन दो ब्राइट। इसका टेस्ट निखारने डालो थोड़ी सी शक्कर, क्यूकम्बर पुदीना मॉकटेल गर्मी को देगा टक्कर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वाले कल्चर का ये मेल मींस किचन में कलाकारी दिखाने वाला खेल। आपकी उपस्थिति से स्वाद का जायका में आई है बहार। सोमवार और शुक्रवार के इंतजार में भारतीय सीमा हुई बेकरार।
इस शो पर बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी खाना। आगे बात होगी और पहले सुनिए अगला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। अलियु मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी हवा से, अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: दूर कहीं अमेज़न के काले और घने जंगलों में देर रात जब नुकीले दांत वाला डरावना जीव न्यूक्लिया अपने दैत्याकार भयंकर और बेस हेवी बीट्स बजाता है तो मानो पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। जब जंगल के सारे जानवर डर कर चुप हो जाते हैं तब उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है,
1: खाओ।

जय हिंद एनडी एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90 एफएम का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध 1/2 लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंथ कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मीन्स कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहाहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होममेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM means your own radio. स्वाद का जायका निभाती हूँ from our studio. मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा

मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नींबू 1, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची, फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए, साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी, इसलिए बी केयरफुल। हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुत्फ उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में
गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़?

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। इस स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।